0: हाँ दमी होंगी ना ये तो।
1: वेडिंग पार्टी गमी होंगी ना वाण तो मिता हरेंगे रट्टे में से यहाँ गिन वाण।
2: ए सागिब सागिब।
0: दे सागिब आर मी को ला जवाब दे फमितानी वारा मुहिम को दे मी।
1: ओके मिता फ्रेंड ना हिसाब को मिहिरेंगे।
2: आद बदाड़े खाले ती रंगड़ो मी है मुस्तंद मी है काहे देवनी मा आहार में मतिं हादान ताली दो मी हार
1: ए मा बार तिकन वागे मदक्का खाले में मतिं हाना ने दुनी की नूने फुर्तम दोस कोल जेहने वारा विस्ना गें तावले दूनी रंगड़ो मोड़ोई मा रंगड़ो वान
2: खाले नू वान रंगड़े फारू आदे पदा मी फारू मगे दूनी मी फारू मी सागिब इंगे सागिब मी आदग मी हनुंगे मी मिहार बड़ो व्यापार वेरी बड़ो व्यापार कुंफुन्य गे वेरी मी हामी
0: ऐहन ता माशाअल्लाह
2: ऐहन्या फारू इंगे ता सागिब इंगे होरिया चल्ली पुनी कीने का सागिब के अभी मीहा के फरात।
0: ओ मी दो सागिब सागिब के वहाँ कवर गिने अंता काने शारे हो बदलवे में वारंग उफावे जे सागिब अंगा मत तावरी फुहार गु
1: एयो ए कोंका मका आहन न तावरी फुरंग होती आहन न तावरी फुरंग जेह कम मिया कुने तेरनो
2: नूने तिहन नुबुने सागिब सागिब अंगा मत तावरी फुहार गु तिहुनानी की कोमे कोमे मिह का कुरे एकांक में नूने हाँ क्या मैं साहन न करनुआन तिमाये वन दिहा हर दोषी अंगन का ऐसा गिब इंदे के तिवलनी ए सामासा का मित्ता
0: असलवस थे दे शारी होती बोनी आने का सागे बग वेडिंग पार्टी करनु थे बोने ऐतबो से राहरिंग होरी ऑफिस ततुरे का राज सेम्बेरोगा एकम को आने में सामा वारा बोटंग हैरान वे शारी हुए वहाँ का बोनी मा सागिब कहला रीति जुआ क्या वह कहूँ रे मिहे आने कहाँ मनोला है कुरांगल वाजिफाय गदो उलुनी वेस ऐवे वा सागिब वाणे तो हम आशार ने वारा हरुगे आंहिं कुदिं वेस
1: आंहिं कुदिं वाणे फारू एका मको आहारिंगा बोल कुरा कमें गोन्ना आहारिंगा बोल कुरा को तुका क्या वन या की खोम्मे कोते कस कुरंजे ही कम ऐवे मक क्या वन कुरा एका मुवे सवाब आधारु मली बे कोता एम मे रंगलो निया तुगा एम मे रंगलो विष्णु गाय कं कुरुमेन्नो रंगली कोम्मे कम कोम्मे स्मिय कं हेव कम्मे को देवे तो बलाशे बुने नो तेतब बुने न्या आहरे डीना कहवनी कुरी मिये कं हेव कम्मे को दिन मगनी तुगा

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो केरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य के आडू
3: अहाशे बुनाना रईतुं कुरंबेनुं वा स्वादुत
2: सियासी फरातका गुलं बदही कुरुमा
3: अहाशे बुनाना सियासी मैदानुगा हरकातरिवा फरातोगे सियासी ततुर अहाशे बुनाना
1: हुकुर्दु मेंद्रफह दे जहर रिपीट होमदु होगरे नो जहर आदि अंगार्दु होगरे मेंदम एके जहर
2: इंहा सतरस्ते का 49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
3: अहाशे बुनाना
4: अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम दंता हाल केनता
4: दंता हाल रंगर फातुन को बाली वे उले कहेंगे ता
5: आ दंता कोम्मे दो को सालो बला बेनु माही तेरे का फोर को देमु मिदानी दोन तक काम बट नो है फातुं को कोई कन्य नो आने को एकन्य उल्लेखी डॉक्टर दक्कम में स्तादिवाने था ऐहम भी मैं कम में साल में वारा फरवा तेरे कमाए किए बकोरा
1: कोम्मे उमुर का
6: कोम्मे फंतिया का
1: कोम्मे गिनतिया का
6: मीडियम वेव, 89 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड